सुना है लोगों से, खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: दौलत भी शौहरत भी आज सब कुछ कोड़ मेरे।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे,
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल दोस्तों। वक्त हो चुका है 10 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो चुकी है। आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका सर?
0: आईएस गुर्जर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से जी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
1: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना? हेलो ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: हेलो
1: सर, नमस्ते
0: जी। नमस्ते,
1: नाम क्या है आपका?
0: जी मोहम्मद हारून गोदलिया, जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अफसाना का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: याद तेरी आती है।
1: ओके सर, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे बुदली से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रही हो?
1: नशिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: अकेला।
0: ओके मैम, सुना रहा हूँ आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: बीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
3: गंगापुर।
4: हेलो
5: हेलो
4: सर, नमस्ते।
5: नमस्ते परमजीत चौधरी, आज कर रहा हूँ आगे जी।
4: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: गाना तो बढ़िया सुनाएंगे।
4: हाँ जी बताइए।
5: अभी अभी थी दुश्मनी।
4: कौन सा सर?
5: अभी अभी थी दुश्मनी।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:25 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारे स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए। दोस्तों हमारे स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475। उन्हें प्रयास करे 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 पर कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: शिमारु।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: धन्यवाद।
2: यू वेलकम सर। हेलो
4: हेलो बहन जी नमस्कार जी।
2: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
4: नाम तुलसीराम मीना ग्राम पिल्लू खेड़ा से।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं।
2: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद मेरी बहन।
2: यू वेलकम सर।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते। नाम क्या है आपका?
0: दीपक मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तीन पैग।
1: कौन सा सर?
0: तीन पैग।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
3: ਹੈ।
2: ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ
3: ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हाँ जी नमस्ते मैडम जी।
3: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: मैडम जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा राय।
3: हाँ जी सर, बहुत दिनों में कॉल किया है आज तो।
2: मैडम मैं गया था बाहर घूमने, गया था बेटे को छोड़ने उधर।
3: हाँ जी।
2: तो 15-20 दिन रहा उधर, अभी हाँ तो 3 दिन हो गए आए हुए।
3: हाँ सर, बहुत दिन हो गए, आज 10-15 दिन हो गए कॉलिंग नहीं आ रही।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे परसों दिया था फोन तो सर से।
3: हाँ जी।
2: चलो वहाँ बिल्ड करता तो प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, मन खुश हो जाता है सुन के रोज।
3: हाँ जी सर, धन्यवाद। हाँ जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: आज मुझे साथ ही गाना जम्मा जम्मा जम जम्मा।
3: ओके सर सुना
2: रहे। कल हम कहाँ तुम कहाँ।
3: ओके सर सुना,
2: बहुत अच्छा गाना, मैंने मुझे बहुत पसंद है ये।
3: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैडम। थैंक
3: यू। वेलकम सर। हेलो।

0: नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम आमीन शाह पिलौदिया।
1: हाँ जी सर, कौन गाना सुनना चाहोगे?
0: बबुल प्यारे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर नाम क्या है आपका?
1: बीएस बगड़ावत।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मेना गांव से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम गाना सुनना हमको वो वादा ना तोड़।
0: वादा ना तोड़ ना।
1: हाँ वो नींद तुम्हारी प्यार लेने चुराई, वो है ना लता मंगेशकर गाना।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी नाम क्या है सर आपका?
1: मोहम्मद शादाब खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: उत्तर प्रदेश।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दीवाना।
0: दीवाना

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा नाम सुनना चाहोगे?
0: आसमान से जब जमीन पर देखता होगा।

0: हेलो
1: मैम, क्या है आपका?
0: अमित सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: लुंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: पत्थर ला चोटी गिर गई आंजू।
1: कौन सा सर?
0: पत्थर ला चोटी गिर गई आंजू।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड

0: कितनी बार कॉल करोगे?
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:14 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो।
2: हाँ सर नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम, फोन क्यों उठा रहे आप?
2: सर वो अनाउंसमेंट चल रहा है ना।
1: अच्छा
2: हाँ जी बताइए। गाना
1: बता रहा हूँ, एक धोखे प्यार के धोखे।
2: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नमस्ते मैम, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम रेखा है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो मैम?
1: गंगापुर से, मिर्जापुर से बात कर रहे हैं।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: तुझे भूल जाना जाना मुमकिन है।
0: कौन सा मैम, थोड़ा तेज बोल दोगे?
1: तुझे भूल जाना जाना मुमकिन है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी
2: फिल्म। May her soul rest in peace.

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अंशुल मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैं भोलेनाथ का गाना सुनना चाहता हूँ, वो है ना, बगड़ बम बम बम बम बम लहरी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपके सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नीरा कुमारी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: जगह सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सुनेगा मेरे बाजू
1: से। ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: मंजूर अली खान सर।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: मंगलपुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जो है वादियों से।
0: कौन सा सर?
1: वादियों से।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: प्रिंस। प्रिंस, प्रिंस।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी में सर कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ख्याल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: से रुकना है।
1: तू चिंता मत कर, कल मैं पहुंचाऊंगा तुझे कोर्ट।
2: समझ आई बात?
3: नहीं पहुंचेगा भैया जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सौरभ मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तू आके देख ले।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपके फरमाइश पड़ेगा।
2: कार्निवल द लास्ट राइड।

0: सुनना पूछती थी, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैंने ये सुनना चाहती मैडम, कहती है वो सुन लो तेरी नमी दिलवर तेरी जुदाई।
0: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: बेटा जी,
0: सत श्रीकाल
1: बेटा, सत श्रीकाल। और भाई ठीक ठाक हूँ।
0: हाँ सर ठीक है। सर आपका पूरा परिचय दीजिए पहले।
1: पिंड वाड़ खुर्द जिला बठिंडा तो जगजीत मट्टू बोलना पंजाब तो। भाई
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गीत बेटा एक पुरानी फिल्म है, मोहम्मद रफी साहब जी ने गाया गीत हो।
0: हाँ जी।
1: फिल्म का नाम है जी देश प्रेमी।
0: हाँ जी।
1: उसके गोल बोल गला पर बताऊं जरा।
0: हाँ जी सर।
1: मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। एक ही डबिंग।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सत श्रीकाल बेटा।
0: सत श्रीकाल सर।

0: निकिता,
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सोनी है हीरे तेरी यादा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं।
2: मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
3: इट्स ओवर।

0: दादरी।
1: सो वॉट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: You know, Shail, it really hurts.

0: यूपी ईस्ट फरगाव से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना ये राजा का सुना दीजिए।
1: हाँ जी बताइए।
0: हीर की डोली उठी।
1: कौन सा सर?
0: हीर की डोली उठी राजा दीवाना हो गया।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: यू वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम अंकुश।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो
1: सर?
2: गंगापुर सिटी।
1: सुनना चाहोगी?
2: अमन राजगिल का शादी घोड़ी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपको। सर

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: क्यों खनके तेरी चूड़ी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: तेरी बिंदिया।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सोनू मीणा।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मासूम सुहास।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम महेंद्र सिंह।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं
0: सर? मैं अबू सिटी।
1: कौन सा नाम सुनना चाहोगी?
0: बहुत लड़की बहुत ज्यादा आती है।
1: कौन सी कौन सुना रहे हैं?

0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: पलक।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चार दिनों की लंबी जुदाई।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद यासीन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: पाल सिंह।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैं तेरा मन की मैं ना होती तो मेरा दिल खत होता।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: विजय शर्मा बोल रहा था, मऊ कलर से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
3: DS साइंस अकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस अकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है?
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, तो आपकी आवाज़ कम करो, क्योंकि आवाज़ आप नहीं आ रही।
0: ठीक मैडम। हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मैम, मेरा नाम सुनीता है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
0: देवा का सनम का
1: जी। एक नाम सुना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रोजी ना जो याद तेरी आई रे।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:30 का। दोस्तों गंगा पर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। घर ले लिया। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी ही देर में 1 बजे नए तराने कार्यक्रम के साथ और सुनते रहिए फिल्म संगीत बैक टू बैक।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सेलेक्ट।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो DS।

0: My name is Astha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE. Let's study with us.
1: Mughal Badshah Akbar ke darbar mein सेनापति के स्थान पर थे और इस आमेर किले के अंदर राज परिवार के लोग रहा करते थे और इस किले की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर दीवार के साथ में ही जयगढ़ किले का भी निर्माण किया गया था और इस आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए जमीन के अंदर से 2 किलोमीटर की गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। वो सुरंग भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आमेर किले की सुरक्षा के लिए जयगढ़ किले के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जयवान तोप भी बनाई गई थी। इस तोप का वजन 250 टन है और इस तोप को मात्र एक ही बार चलाया गया था और जिन सैनिकों ने इस तोप को चलाया था उनके कान के पर्दे फट चुके थे। आमेर किले को देखे बगैर जयपुर की यात्रा आपकी अधूरी रह सकती है क्योंकि आमेर किले के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल बना हुआ है जहाँ पर राजा दिन में मशाल जलाकर अपने रानी को चांद और सितारे दिखाए करते थे। और यहाँ का पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी और यहाँ के पुराने जमाने के शौचालय और दीवारों पर बनी हुई 24 सोने की पेंटिंग्स क्यों ना हो, ये आमेर किला अद्भुत वास्तुकलाओं से संपूर्ण है। आमेर किले तक आने के लिए आप अपने निजी वाहन के द्वारा सीधा किले के प्रवेश द्वार तक आ सकते है या फिर आप हाथी की सवारी करते हुए भी किले में आ सकते है। लेकिन हाथी की सवारी करने के लिए आपको 3,500 रुपए टिकट देना होता है जो कि बहुत ही महंगा है। तो आप चलकर या फिर यहाँ पर मिलने वाले जीप से भी आमेर किले तक आ सकते हैं। आमेर किले में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर आपको 1,000 साल पुराना ये खंडर नजर आता है और इसी खंडर में ये आपको छोटा सा पीला कलर का पैलेस नजर आता है। इसी जगह पर महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था। बाद में उनका विवाह मुगल बादशाह अकबर से हुआ था और यही पर पास में जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, इसी मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी और इस मूर्ति को हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान मुगलों से बचाकर इस मंदिर में लाकर रखा गया था। आमेर किले के अंदर आते ही इस किले के 4 कोर्टयार्ड में से आप सबसे पहले कोर्टयार्ड यानी की पहले आंगन में पहुँच जाते हो जिसे जलेब चौक भी कहा जाता था और नगार खाना बजाकर इसी जगह पर सैनिकों को और आम जनता को जमा किया जाता था और इसी जगह पर युद्ध की सारी तैयारियां की जाती थी। इस जलेब चौक में किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य द्वार बने हुए हैं, जिसमें से एक है सूरज पोल क्योंकि इस दिशा से सूरज की पहली किरण इस द्वार पर पड़ती है, इसीलिए इस द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। और पुराने जमाने में राजा महाराजा इसी द्वार के द्वारा हाथी की सवारी करते हुए अंदर आते थे और आज भी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हाथी की सवारी इसी द्वार से अंदर आती है। और दूसरे द्वार का नाम है चांद पोल यानी कि मून गेट क्योंकि चंद्रमा इसी दिशा से निकलता है, इसीलिए इस द्वार को चांद पोल कहा जाता है। और ये द्वार आम जनता के आने जाने के लिए था। यहाँ पर आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा और इसका नाम है लायन गेट यानी कि सिंह पोल। और इस द्वार पर 400 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग्स नजर आती है जो कि आज भी वैसी की वैसी है। और इसी लायन गेट से प्रवेश करते हुए हम इस किले के दूसरे कोठियार यानी कि दूसरे आंगन में पहुंच जाते हैं। अंदर के तरफ आते ही संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये 48 स्तंभ की दीवाने आम की इमारत आपको नजर आती है। दीवाने आम यानी कि उस जमाने का कोर्ट रूम। इस जगह पर सामान्य जनता दरबार भरा करता था। इस इमारत के बीच में राजा और उनके मंत्री बैठा करते थे और इमारत के बाहर सामान्य जनता, गांव और जनता के सारे प्रश्न का उलझन राजा इसी जगह पर सुलझाया करते थे। यहाँ पर हमाम तुर्किश बात यानी कि स्नान घर भी बना हुआ है और इसी बात में राजा मानसिंह जी अपने रानियों के संग स्नान किया करते थे। इस जगह पर उस जमाने की पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी यानी कि गीजर भी बना हुआ था। गीजर में लकड़ियां डालकर लकड़ियों को जलाया जाता था। और ये जो आपको 2 पानी के टाके नजर आ रहे हैं, इनमें नीचे कॉपर की प्लेट लगी हुई थी। आग जलाने के कारण कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती थी

उससे पानी गर्म किया जाता था। फिर बाद में इन छोटे से कॉपर के पाइप से पानी बाहर आता था और इस छोटे से नाली के द्वारा पानी को इस बाथ टब में ट्रांसफर किया जाता था और पानी के साथ में ही चंदन, गुलाब, इत्र भी इस टब में डाला जाता था। और यहाँ पर चेंजिंग रूम और मालिश करने के लिए भी अलग से रूम बनी हुई है। स्नान घर के पास में ही पुराने जमाने के शौचालय किस तरह से होंगे, उनकी रचना, पुराने जमाने के शौचालय का स्ट्रक्चर हमें आज भी इस किले में देखने को मिलता है। दीवाने आम के सामने ये गणेश पोल द्वार बना हुआ है जो कि राजाओं का निजी प्रवेश द्वार हुआ करता था और इस द्वार पर हिंदू देवता भगवान गणेश जी की प्रतिमा और साथ ही में 400 साल पुरानी बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार पेंटिंग्स बनी हुई है जिन्हें फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा जाता है। और इसी गणेश द्वार के बिल्कुल पास में पुराने जमाने की भोजनशाला भी बनी हुई है। गणेश पोल द्वार के ऊपर आपको ये सुहाग मंदिर नजर आएगा। इस जगह पर विधवा और अविवाहित महिलाओं का आना बिल्कुल भी वर्जित था। जब राजा युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तब राजाओं के रानियां इसी जगह पर बैठकर राजा की युद्ध भूमि में जीतने की दीप प्रज्वलित करके मनोकामना किया करती थी। और जब राजा युद्ध भूमि में विजय हासिल करके वापस महल में आते थे तो इसी सुहाग मंदिर में बने हुए इस छोटे से खिड़की से रानियां राजाओं पर फूल बरसा कर उनका पूर्ण स्वागत किया करती थी। दीवाने आम के पास बनी हुई ये 27 कचेरी यानी कि उस जमाने का रिकॉर्ड रूम, महाराजा के अधीन उस जमाने में 27 जागीर यानी कि

0: और उन 27 राजोड़ों का लेखा जोखा इसी जगह पर किया जाता था। इस जगह पर अलग अलग 27 खाने बने हुई है और इन खानों में राजा के मंत्री बैठकर उन 27 राजवाड़ों का अकाउंट यानी कि हिसाब किताब इसी जगह पर किया करते थे, इसीलिए इस जगह को 27 कचेरी कहा जाता है। 27 कचेरी के सामने आमेर किले का ये आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है और सामने आप ये जो देख रहे ये सैफ्रॉन गार्डन है यानी कि केसर की बाग। राजा मानसिंह जी ने 16वीं शताब्दी में यहाँ पर केसर की खेती करनी चाहिए थी और केसर के पौधे जम्मू कश्मीर से लेकर आए थे और इस खेती के लिए राजा ने आसपास इस खूबसूरत मावठा झील का भी निर्माण किया गया था, लेकिन इस जगह पर गर्मी ज्यादा होने के कारण राजा केसर की खेती करने में विफल हुए थे। गणेश पोल द्वार से अंदर आते ही आप इस किले के तीसरे कोठियाड़ में पहुंच जाते हो और यहाँ पर आपको ये शीश महल यानी कि दीवानी खास नजर आएगा। इस शीश महल को मिर्जा राजा जयसिंह जी के द्वारा बनवाया गया था और इस जगह पर राज परिवार और राजा के मंत्री को ही आने की अनुमति थी। सामान्य जनता का यहाँ पर आना बिल्कुल भी वर्जित था और इस जगह पर जितने भी आपको पिलर्स नजर आएंगे ये सारे इटालियन मार्बल से बने हुए हैं और इस शीश महल के अंदर आपको जितने भी शीशे नजर आ रहे हैं ये राजा ने बेल्जियम कंट्री से मंगाकर यहाँ पर लगाए थे और इस शीश महल के दोनों तरफ रानियों के दो कमरे बने हुए हैं। राजा इन कमरों के अंदर रानियों को दिन में मशाल जलाकर इस शीशों के द्वारा चांद और तारे दिखाया करते थे। शीश महल के सामने ये सुख मंदिर निवास बना हुआ है। इस जगह का राज परिवार के लोगों के द्वारा गर्मियों के समय में प्रयोग किया जाता था और इस सुख मंदिर को सफेद संगमरमर और नीले नक्काशीदार मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनवाया गया है। यहाँ पर आपको ये मार्बल से बना हुआ जालीदार झरना नजर आएगा और इस झरने के ऊपर पानी का टाका बना हुआ है और जब इस झरने से पानी बहता है तो मधुर आवाज आती है और साथ ही में बहुत ही ठंडी हवाएं भी चलती है, तो गर्मी के समय में रानियां इस जगह पर झूला लगाकर इस ब्यूटीफुल गार्डन को देखते हुए झूला झूला करती थी। और इस जगह पर आपको एक पुराने जमाने की बग्गी भी नजर आएगी। रानियां गणगौर और तीज के त्योहार में 10 किलो तक के कपड़े और ज्वेलरी पहना करती थी तो उनको चलने के लिए दिक्कत आती थी, इस वजह से उनके लिए ये बग्गी बनवाई गई थी। अभी हम आ चुके हैं आमेर किले के चौथे कोर्टयार्ड यानी कि चौथे आंगन में और इस वाले हिस्से में राजा मानसिंह जी रहा करते थे और राजा मानसिंह जी की 12 रानियां हुआ करती थी और इस जगह पर 12 रानियों के लिए एक ही डिजाइन के अलग अलग कमरे बने हुए हैं और इस जगह पर पुरुषों का आना वर्जित था और इस जगह के आखिरी हिस्से में यहाँ पर किन्नर पहरा दिया करते थे और यहाँ पर सेवा करने के लिए भी किन्नर थे, इसीलिए इस किले के आखिरी हिस्से को जनाना महल यानी कि जनाना देवड़ी कहा जाता है।
1: मानसिंह जी यहीं पर रहा करते थे और अगर आप ध्यान से देखना ये पूरा सेक्शन मानसिंह जी का है और आपको इस दीवार पर जो छोटी छोटी खिड़कियां नजर आ रही है ये सीक्रेट टनल है। इसी रास्ते के द्वारा ये पूरा कॉरिडोर जो भी रानी के कमरे यहाँ पर बने हुए सारे रानियों के कमरे से ये कनेक्टेड है और ये रास्ता यहाँ से निकलता है। मैंने जो आपको नीचे से रास्ता दिखाया था वो यहाँ पर है, हम अंदर चल के देखते हैं। अभी हम जिस रास्ते से चल रहे हैं यही वो सीक्रेट रास्ता है, यही से राजा अपने रानियों को।

0: सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: 89.6 पे रेड ऑडियंस
1: भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
2: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
2: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
3: मां मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
2: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम
2: बिछड़े अब साथ नहीं हो तुम फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: Hey, sorry brother. Actually, she's my wife and she's mentally unwell.
0: अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज।
2: Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: एफडीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पल्लव। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो DS।

में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: अरे भाई तो बोलपट गाना खत्म हो लिया।
1: अच्छा राम राम दोस्तों, तो हमारा गाना कैसा लगा कर लो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, और वत्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, गाने को लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।

0: के चाल रहा है।
1: एक बात कान खोल कर सुन ले, इन छोरे चकरा मना पड़ा है तो ना फिजिकल पढ़ना फिजिकल, बाकी मेरे पर छोड़ दे, इनके घर आ रहा था मैं बात कर लूंगा।

0: क्या हुआ बच्चा?
1: बाबा जी यू बगमा बाना पैर पास भी मन चंचल हुआ है, पुरानी बात बहुत याद आवा गुरु जी।
0: इन्हीं कर्म कांडों की वजह से अनेक आश्रमों के ताले लगे हैं, अतएव तू प्रभु की भक्ति में लीन हो जा और यहीं पर सब कुछ है। बोलो ओ।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सारी तैयार होली और अब तक ना आई है वा बेरा नी के बन रही है अपने जान में ए जान जान मटके है। देखिए इबके मन ने भी दूर नी चटाई तो देखिए ही ना सपना चौधरी

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ लड्डा गाड़ी और ऊपर से चढ़ा मेरा तेल, रोक तेज में,
2: रोक रोक जा तेल की तरह के बाएं में ठीक।
3: सुना तो रहने सोच गया मैं।
1: कहाँ ना बोले, देख के और बना रखा है। चाटी पाटी, जब पापा जो बन जाओ, जो भी जाओ।
4: बस।
1: रोक दे।
4: उम्र बर्बाद हुआ, देख रहे हैं कौन आगे।

0: तो किसी लागी मेरी साड़ी
1: लाग तो एंडी है पर सोने की तागड़ी होती ना लट सगड़ जाता।

0: मस्ती हो रही है
1: ना, और सारे काम का कोरोना हो रहा है। अरे अरे अरे रुक रुक रुक, ले तू भी ले ले
0: ना, मेरे तो हूँ दशक उठ जाए कदे कदे।
1: अच्छा ओ दसको आजा। अरे भाई गाना लाइक कर दो, शेयर कर दो।
0: अच्छा और सब्सक्राइब कौन करेगा?
1: ये करेंगे और कमेंट भी ये करेंगे।
0: हाँ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस।

सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो चुकी है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सके।
1: हेलो
2: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: फिल्म का नाम है तवायफ और गाने की बोल है आज की शाम आपके नाम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद मेरी बहन।
1: यू वेलकम सर। हेलो हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
2: नाम बाबू खान
1: है। हाँ से बात कर रहे
2: हैं।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: परम आदरणीय दीदी सर नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा मथुरा से आदरणीय पलक दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ रेडियो डीएस पर।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: दीदी आज एक कॉमेडी गाना सुनना है।
1: हाँ जी,
0: राजस्थानी की हरियाणी है।
1: बताइए।
0: कर्म फूट गए उन मर्दन के जिनकी जोरू का।
1: सर दोबारा बताना थोड़ा सा।
0: कर्म फूट गए उन मर्दन के जिनकी जोरू।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम सागर है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: दशहरा मैदान से बोल रहा हूँ।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: जंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: पैरों में बंधन है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: गुड इवनिंग मैडम।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम सोहन सचिन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है बंजारम और गाने के बोले मुझे थोड़ा थोड़ा याद है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रही हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रहे।
0: ओके।

हाँ हाँ हाँ, थोड़े थोड़े लेफ्ट आगे पीछे, अरे अरे अरे अरे, अरे ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और इस वक्त अगर कार चलाते हुए आपने आगे वाले या बाजू वाले, दाएं वाले, पीछे वाले, किसी भी कार वाले इंसान को आपने गंदे गंदे हाथों से इशारे अगर किए हो, तो शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और जिम्बाब्वे में नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे में रूल्स है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी आसपास वाले गाड़ी के ड्राइवर या सड़क पे भी खड़े इंसान को गंदे इशारे करोगे हाथों से, तो आपको जेल हो सकता है। शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और इस वक्त ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएस 89.6, क्योंकि कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए।

0: के घर पर रेडियो डीएस, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।
1: ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस और कहीं जू में नहीं हो आप। लेकिन लेकिन लेकिन आज का शो यही तक था। लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया फैक्ट मेरे हाथ लगा है। क्रो यानी कि जो कौवे होते हैं वो इंसानों के चेहरे याद रखते हैं। और एक और खास बात यह है कि अगर उनके मन में कोई ग्रज है यानी हमारे खिलाफ शिकायत है कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी याद रखते हैं। यानी कल ऑफिस जाओगे और बॉस को पुराने ग्रजेस याद रहे तो वो आपका बॉस नहीं, वो है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6।

0: खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ये तो आपने सुना ही होगा। मैं हूँ आरजे खुशी, लेकिन इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आजकल लोग अपनी जो बड़ी खुशियां हैं उनको मनाने से भी कतराते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में हर दिन बहुत खास होता है, हर दिन कोई ना कोई खास तिथि होती है, और अगर हम क्लोजली देखें तो कहीं ना कहीं हर दिन एक त्योहार होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए माना हर दिन तो हम लोग नहीं मना सकते, लेकिन महीने में एक या दो दिन तो ऐसे जरूर आते हैं जब हम सब लोग मिलकर साथ बैठकर किसी एक त्योहार को मना सकते हैं। इन छोटी छोटी खुशियों को अगर हम मनाना शुरू करेंगे ना, तो हम देखेंगे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड होगी। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी लाइफ में बहाना होना चाहिए लोगों को खिलाने का, उन्हें अपने घर बुलाने का और बहुत सारे मजे करने का। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बातें ना हम लोगों ने कोरोना काल में सीखी है। मैं हूँ आरजे खुशी। कोई लोग बोलने लगे कि हल्दी का दूध पियो, तो कुछ लोगों ने कहा कि लगातार दवाई लेते रहो, कुछ लोगों ने कहा लगातार आप च्यवनप्राश खाते रहो, तो कुछ लोग बोले कि आंवला रोज खाते रहो। लेकिन आप जानते हो कि एकदम से कुछ खा लेने से आपकी बॉडी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेली कुछ अच्छा खाते रहोगे ना, तब बात है। अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि इतनी जो कलरफुल सब्जियां आपको दिखती है ना, इतने रंग बिरंगे फ्रूट्स आपको दिखते हैं, उनको खरीद कर खाना शुरू कर दीजिए। जितने रंग की सब्जियां आप खरीदेंगे, उतना प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। और अगर आप रेगुलर वे में ये करेंगे तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि आपको बाहर से किसी चीज को कंज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो किसी भी सीजन में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजी खुशी।

0: हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हमारा दिमाग ना कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देता है अगर हम जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत वीडियो देखने की आदत उसको पड़ जाती है और लगातार गलत वीडियो देखता रहता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड की वीडियो देखने शुरू करते हैं और एक के बाद एक वही वीडियो देखते रहेंगे, वही वीडियो उनके टाइमलाइन में आ जाएंगे। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपने फोन में देख रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे दिमाग पे। एक तो अगर हमने एक ही तरह का कंटेंट देखना शुरू कर दिया तो वो ही हमारी प्रोफाइल पे बार बार आएगा। इसलिए अगर कोई फालतू का कंटेंट आपकी प्रोफाइल में आए ना, उसे देखिए मत, उसे स्किप कर दीजिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी हमें उस यंत्र से मिल पाए जिसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन। सबसे ज्यादा हम लोग इसी के साथ वक्त बिताते हैं ना, तो क्यों ना इसे ही पॉजिटिविटी में बदल दिया जाए। सोच कर देखिए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सर।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतल
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे लेकिन, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: पसंद
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।